हे सर्वज्ञा कृपा निधान ओ ऑल वाइज श्री राम ओ रघुनाथ यू आर द ओशन ऑफ ग्रेस एंड द ज्वेल ऑफ द सोलर रेस एंड व्हाट आई से टू यू आई हैव कम हियर इन अ डिसगाइज व्हाट यू सी इज नॉट हु आई रियली एम डिवोटीज इट्स कमिंग आउट यू नो आई विश टू टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई हैव ब्रॉट यू इंपॉर्टेंट न्यूज But what I have to say to you, there must not be a third person. Just you and I. And if a third person should hear this, that person will perish, that person will die. So ensure that there's privacy so that we can speak. Whoever it may be, whoever hears, that person, whoever interrupts that conversation, that person will surely face death. So devotees, you see how serious it was? Strict conditions. And so, Sri Ram explained that. He told Lakshman, dear

तेरी डोली का टीका किए देवा जो भक्त तेरा जिए उसे अमृत का है मोह क्या हंसके विष का वो प्याला पिए तेरी महिमा की छाया तले काल के रटकी पिहाय चले एक चिंगारी प्रतिशोध से फिर ही रावण की लंका जले By putting the dust of your feet on his forehead like a tikka god, that devotee of yours lives. He doesn't wish for nectar but drinks the cup of poison happily. Under the shadow of your greatness does the wheel of time's chariot goes, but just as